जिसका सब सुधारो जे को गावे जे को पुंच तिसका हो उधारो ए वस्त जी न जाई नित नित राख और तारो तम

संग जी सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कृपा कीती है। महाराज जी की दया सदका पिछे 246 अंग सतगुरां दी पावन बाणी आपां सारिआं ने पढ़ी सुनी है। महान जग लगा होया है जिस दे विच सचे पातशाह महाराज सानू सुभाग बख्श रहे हन। इह वड्डे भागां दी निशानी है जिहड़ा गुरु के हजूर बैठ के गुरु की गोद दे विच बैठ के पावन बाणी पढ़ रहे हां। साध संगत जी आओ शरदा भावना सहित सचे पातशाह महाराज दीआं

अंदर समाधि लीन होए बाबा मोहन जी समाधि नहीं खोल दे, बड़िया आवाजा मारिया कुंडे खड़काए दरवाजा नहीं खोलिया, एवें पूरी रात उथे भाई गुरदास जी खड़े रहे नहीं दरवाजा खोलन तो, फिर हार के वापस मुड़ आए। फिर बाबा बुढ़ा साहिब जी नूं भेजिया गया, बाबा बुढ़ा साहिब जी जदों साध संगत जी उथे गए, बाबा बुढ़ा साहिब जिया ने जाके ते बड़े जोर दे नाल दरवाजा खड़काया, बड़े जतन कीते, जदों कोई वाह ना चली बाबा मोहन जी ने दरवाजा ना खोलिया, दरवाजे दी चूल पट के सीधा जगाड़ू जट्टां आला काम कीता, दरवाजा खोल के साइड ते रख दिता, दरवाजा पट के अंदर वड़ गए बाबा जी बाबा बुढ़ा साहिब जी। जदों बाबा बुढ़ा साहिब जी अंदर गए ते जाके शरीर नूं हिलाउण दा जतन कीता, हिलाउणा शुरू कीता, इन्नी देर नूं इस गल दा पता बाबा मोहरी जी नूं लगा, बाबा मोहरी जी भज के आए, बाबा बुढ़ा साहिब जी नूं बेनती कीती, बाबा बुढ़ा जी आप जी बड़ी सत्कारत शख्सियत हो, गुरु नानक साहिब जिया तो आप जिया दा समूह सिख पंथ दे अंदर बहुत दिल दे विच श्रद्धा अदब सत्कार सहित सत्कार कीता जांदा है, ते बाबा मोहन जी भी बड़े जपी तपी हन, कोई कठोर कोई करड़ा शब्द ना आप जी नूं बोल देन, आप जी हुण इथों चले जाओ, जे समाधि नहीं खोल दे ते आप जी इन्हां नूं परेशान ना करो। बाबा मोहरी जी दी इस बेनती नूं सुन के बाबा बुढ़ा साहिब जी भी वापस श्री अमृतसर साहिब आए। साध संगत जी फिर अमृतसर तों संगती रूप धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज आप पोथियां लैण वास्ते जिथे अज गोइंदवाल साहिब गुरद्वारा चुबारा साहब है उथे महाराज आप गए, जाके सतगुरु सच्चे पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज की निम्रता की मूर्त उन्हां दे चुबारे दे हेठां बैठ गए, ए वाला शब्द उचारण किया, इस शब्द का जिहड़ा पहला पदा पहला पौड़ी कह लो पहला पदा मोहन तेरे उच्चे मंदिर महल अपारा, मोहन तेरे सोहन द्वार जी ओ धर्मशाला, ए साध संगत जी शब्दां दा कीर्तन जदों करना शुरू कीता, संगतां ने वेख्या कि गुरु अर्जन देव महाराज भुंजे ही बिना किसे थल्ले विछाई तो ही गली दे विच बैठ के कीर्तन

कछ हो नहीं कछ आए न मोरा, अवसर लज्जा राख ले सदना जन तोरा। भगत सदना जी भक्ति काल दे दौर दे ही सिंध प्रांत हाल पाकिस्तान दे पैदा हो जाए। पेशे तो आप कसाई सन, रोज बकरे वढ़ के उना दा मांस वेचना नित दा धंधा से। इतनी कठोर किरत ने कीर्ति करन ते किवें मजबूर कीता, इतने कठोर पेशे ने एक ऐसा कोमल दिल किवें पैदा कीता, इहदा एक पिछोकड़ है। कहिंदे ने रात दे वक्त बादशाह दे अहलकार आए ते उन्होंने मांस दी मंग कीती थोड़े जिहा, शेर दो शेर। ते सदना सोची पै गया जे बकरा मैं वड्या ते बाकी दा मांस बेकार जाएगा सवेरे तक। उन्हें बकरे दी पिछली एक लत वड्डण दी सोची ते भाई बाकी इसनू सवेरे जबा करांगे। छुरा लेके जैसे बकरे दी लत वड्डण वास्ते गया, इसे ही कठोरता दे चों दया उत्पन्न हुई। इसे ही महान पत्थर दिल भावना दे चों भक्ति भावना दा संगीत फुटिया। जमीर दी आवाज सारी रात तड़पेगा, बकरा छुरा हथों गिर गया। बादशाह दे अहलकारां नूं कह दिता, अज तो मैं कसाई नहीं, हुण मैं अज तो बकरे नहीं वड्या करांगा, अज तो मैं अपने अहंकार नूं ते कठोर नूं वड़ना है, अज तो मैं अपने विकारां नूं ज़बह करना है, अज तो मैं अपने पापां ते गुनाहां नूं ज़बह करना है, मैं इस तरीके नाल धंधा बदल दे। कदी विचार करिए, भगत भी कसाई ने पर वो अपने विकारां नूं वड़दे ने, औगुणा नूं वड़दे ने, पापा नूं वड़दे ने। ते जो अपने पापा नूं ज़बह करन विच असमर्थ होया, जो अपने औगुणा नूं ज़बह करन विच असमर्थ होया, कुदरती गल है वो बाहर कतलो गारत करदा है, वो बाहर मार कुटाई करदा है। अपने आप नूं ज़बह करन लई एक विशेष किस्म दी छुरी चाहिए है, जो विशेष किस्म दे लोहे नाल बनी हुई है, जिसका जिक्र पहले पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज करते ने। सच की काती सच सब सार, घाड़त तिसकी अपर अपार। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज किसी शेख कसाई नु मुखातब होकर ही यह शब्द उच्चारण कर रहे हैं कि सच दी छुरी होवे और सच दी टकसाल देते उसकी घाड़त होवे, सच दी उसनू पाण धार लगी हुई होवे, सच की काती सच सब सार, सारे दा सहारा लोहा सच दा होवे, उदी धार सच दी होवे, छुरा सच दा होवे। ते ऐसा छुरा जे चलाइए अपने विकारां ते, ऐसा छुरा जे चलाइए अपने उस मन ते जो पापा नाल भरे होवे, तो साहिब कहिंदे तिसका कुठा होवे सेख, लहू लब निखत्था वेख। अगर इस

भगत रविदास जी महाराज उस दौर विच बनारस विच पैदा होए ने, जद के भगती भाव दे संगीत नाल भारत दा कौणा कौणा सरशार होया होया सी। हर पासे भगती लहर, हर पासे भगत भावना विच डुबे हुए महापुरुष साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा वाक है, वैसे ता हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे, हर युग विच हर समय विच भगत होंदे रहने संत होंदे रहने, लेकिन भारत दा मध्य काल भगती काल मनिया गया, जिस देच चौं दिशां देच भगत ही भगत पैदा होए। उसी भगती काल देच सूफी फकीरा ने भी अपने अमर संगीत दे रहे इस देश नू अध्यात्मिक तौर पे सरसब्ज कीता और मानसिक तौर पे उच्चा कीता, जीवन दी जाच दसी। रविदास जी महाराज उन्हां ही सिरमौर भगतां विचों एक महान भगत ने पेशे दे चमार पर चमड़े तो उच्चे जीण वाले, पेशे तो मोची चमड़े दा कम करन वाले, पर शरीर दे चमड़े तो उच्चे होके उन्होंने सारी जिंदगी बतीत की। शरीर दे तल दे उते जो जी रहा है, चमड़ी दे तल दे उते जो जी रहा है, इंद्रियां दे तल दे उते जो जी रहा है, वास्तविक चमार ते वही है, क्योंकि वो वेखदा है चमड़े नो, चमड़े नो ही सवारना जिंदगी दा मनोरथ है, चमड़े खलड़ी दा ही रस मारना जीवन दा लक्ष्य है। ऐसे पुरुषां नू चमार आख्या जा सकदा है। चमड़े दा कम करदिआं होइआं सुरत चमड़े तो उच्ची रखनी, ए कोई भगत रविदास जी महाराज तो सीखे।

श्री नामदेव जी महाराज के अंदर भावना प्रधान है। दरअसल भगत नामदेव जी महाराज भावना प्रधान पुरुष ने, ते जिथे भावना प्रधान है, जज्बे प्रधान ने, बस ओही भगत है। दो तरह के मनुख ने, कोई अकल दे तल ते जीवंदा है, कोई हिरदे दे तल ते जीवंदा है, कोई बौद्धिक तल ते जीवंदा है, कोई दिल दे तल ते जीवंदा है। जीवन दे ए दो ढंग ने। जो बौद्धिक तल ते जी रहा है उस दे अंदर विचार प्रधान होगी, जो हिरदे दे तल ते जी रहा है उत्थे भाव प्रधान होगा, पर जो ना बौद्धिक तल ते जी रहा है ते ना हिरदे दे तल ते जी रहा है, वो मनुष्य ही नहीं है, वो पशु है। पशु इन्हां दोहां थल्लां तो थल्ले ही जीवंदा है। इत्थे प्रश्न खड़ा होंदा है, भाव प्रधान है कि विचार प्रधान है? दरअसल विचार नाल वस्तु नू समझना है, हस्ती नू समझना है, और भाव नाल हस्ती नाल जुड़ना है, वस्तु नाल जुड़ना है। अगर भाव ना होए तो जुड़ नहीं सकांगे, विचार ना होए तो समझ नहीं सकांगे। जन्म तो मनुख भाव ही ले

0: परमात्मा इस तरह जिन्हें विश्वास किया सच्ची मुची उन्हें रब न प्रगट करके गल मैं सिर्फ तुम्हें गुरमत के नुकते चो दिखा ने कुछ उदाहरण अजे बहुत कुछ पै गुरु ग्रंथ साहब इस व्याख्या कर ली भरोसा की यकीन बड़ी वड्डी चीज है।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
0: जो दिन आज है सदा ए नहीं रहना दिना विच गर्दश है। कबीर नामदेव जी का शायद कबीर जी का एक शब्द है नामदेव जी का कबू खीर खांड घ्यो ना पावे। कदी तुसी देखदे हो परमात्मा इन्ना कोई देंदा है कि बंदे दा चित नहीं करता। वो खंड नू कबीर साहब नामदेव कहिंदे आ घ्यो नू शक्कर नू जिन्ने कीमती पकवान ने उन्हां नू ठुड्डे मारदा है नहीं। ते महाराज कहिंदे आ कदी परमात्मा दी इह वी समर्था जे इहो जी खेड वरता दिंदा है बंदा झोली पा के लोकां दबुवे अगे खलो के रोटियां मंगदा है कि मैनू रोटी मिल जाए। कमाल दी गल कईआं नू रोटी नहीं मिलदी वह ठुड्डे मार देंदे ने ते वह बेचारे जिहड़े कदी खंड घ्यो नू धक्के मारदे सन पैरां दे ठुड्डे मारदे सन अज कूड़े दे ढेर ते बैठे होए जिन्हां ने लोकां ने रात खाणा खा के सटिया उहदे विचों चुन चुन के दाणे खाई जांदे आ। दिल्ली आपां कई वारी देखिआ जी जिथे मैरिज पैलेस ने ना जी जदों रात नूं विआह हो जांदे ने सवेरे सब कुछ छड्ड दिंदे आ उत्थे निक्के निक्के बच्चे नगन अपने हत्थां नालों जूठ विचों दाणे चुंदे ने कहे तां उह वी बंदे ना। मेरी बेनती उस परमात्मा की खेड का कोई पता नहीं। गुरु ने शब्द वरत्या कि तू घबरा ना तेरे अंदर की पीड़ा तेरे अंदर की बिरथा सुनेगा वह सुनेगा जिहड़ा सब कुछ करन दे समर्थ है। बेनती असी पहला सिर्फ समर्थ शब्द लिया है। हजूर का बचन है कबू खीर खांड घ्यो ना पावे कबू घर घर टूक मंगावे कबू कूरन चने बिनावे बिना चूना कदी कूड़े तो छोलियां दे दाने पे इकट्ठा करदा है। महाराज कहिंदे कबू कूरन चने बिनावे कबू तुरे तुरंग नचावे कदी कीमती अरबी घोड़िया नूं नचांदा है ते कदी इहो जे दिन आ जांदे ने पैरां च पाण वास्ते जुत्ती भी नसीब नहीं हुंदी। कबू तुरे तुरंग नचावे कबू पाए पनियो ना पावे महाराज कहिंदे कबू खाट सफेदी सवावे कदी रोज बिस्तरा बदलिया जांदा है। कई वारी केवल कख लैके कबू भूम प्यार ना पावे पराली चुकी फिरदा है कि दुकान का शटर बंद हो जाएगा इहदे बूहे अगे मैं पराली विछा के पै जाऊंगा कि उहदी समर्था नहीं। चलो आप इस पक्ष तो नहीं लैना भी यह सोचिए भी आ कुछ जो कह रहे हैं भी नैगेटिव अप्रोच नहीं। दूजे पासे होर भी समर्थ है रुलदियां ते बख्शिश भी करता है। रविदास साहब ते कृपा हुई मैं एक बार अर्ज की सी कि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ने मान अपमान की अवस्था नू बराबर किया पर जिथे लोड़ पई उथे भगतां ने हाथ जोड़ के कहा इज्जत जरूर बख्शी। तुसी देखो एक पाठ कर दिओ मान मांगू तान मांगू तन लक्ष्मी सुख दे। हुण जिन्हां नू जिवें हुण भाई साहब शब्द पढ़िया जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा गुरु रामदास जी का शब्द। हुण इस शब्द विच दो गल्लां ने आम बंदे नू मान मिलदा हंकार विच कहिंदा अपनियां कमाईयां नाल इज्जतां बणाईयां ने सुणी दे असां कमाईयां कीतियां इन्नी कालना काली तां इज्जतां बणियां दुआई रब दी बिलकुल झूठ जे जदों बंदगी करन वाले नू इज्जत मिलदी ए उह कहिंदा मैं इहदे लायक नहीं सां जिथे तू मैनू पहुंचा दिता है तेरी कृपा है। ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਾਲਨਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਖਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਿੱਧ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਐਸੀ ਲਾਲ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਖਰਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆਂ ਮੇਰਾ ਮੱਥ ਹੈ ਛਤਰ ਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਛੋਤ ਜਗਤ ਕੋ ਜਿਹਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ। भी ए शोधरक है, जाकी छोत जगत को लागे ता पर तुए।

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नूं दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तों दुख नहीं निकलदा, किसे नूं मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह के होर दुख हैं। इन्हां सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोबिंदा हर हर नाम।

कि आप परमेश्वर रखवाला हुआ तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रखिया दे आप दी भेटा कर रहे हैं। ए सर्व रोग दा नाश करने वाली बाणी पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए ता फिर दुख नेड़े नहीं आ सकते। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए क्योंकि गुरु की बाणी ता है ही ऐसी।

0: राष्ट्रपति
1: पूरे गुरु का सुन उपदेश
0: भाव ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमर हो गोबिंद
0: मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस अनित त्याग हो तरंग
0: संत जना के तुहर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करहु
0: साथ संग अग्न सागर तरह
1: हर धन के भर ले हो भंडार
0: नानक गुरपुरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: साथ संग पर परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोबिंद अमृत रस पियो
1: चित चित्त हो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का एह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन
0: अमलीक लाल एह रतन
1: सुनत कमाप्त होत उदहार
0: आप त्रै लोक कै निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहत बाजै
0: सुन सुन अमत करे प्रभु गाजै
1: रखे गोपाल महांत कै माथे
0: नानक उदरे तिन कै साथे
1: शरण जोग सुन सरनी आए
0: कर कृपा प्रभु आप मलाए
1: मिट गए बैर भई सब रीन
0: अमृत नाम साध संग लैन
1: सुप्रसन्न भई गुरुदेव
0: पूर्ण होई सेवक की सेवा
1: आज जाल विकार से रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
0: नानक रहि खेप हमारी
1: प्रभु की उस्तुत करो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुख मनि सहज गोबिंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सहोत निधान
1: सब इच्छा ता की पूर्ण होए
0: प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब दे ऊच पाए स्थान
0: और न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रिद नव निध
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठी उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश
0: सबके मत सकल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टेता
1: ए फल तिस जन कै मुख भनी
0: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
1: केहो निधान जपै मन कोई
0: सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
0: समर्थ शास्त्र वेद बखानी
1: सकल मतांत केवल हर नाम
0: मोहित भगत कै मन विश्राम
1: कोट अपराध साध संग मिटै
0: संत कृपा ते जमते छुटै
1: जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए
0: साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुने लाई प्रीत
0: जिस जन आवे हर प्रभ चीत
1: जन्म मरणता का दुख निवारै
0: दुर्लभ दे तत्काल उधार
1: निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी
0: एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से भय भरम
0: साध नाम निर्मलता के कर्म
1: सबते ऊज ताकी शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम सुखमनी।

जियो पिंड सब दिसदा देखा जे आख गवाइए जे लोड़े है चंगा अपना कर पुनो नीज सदाइए जे जरवाना पर हरे जरवे।

चोरा यारा ते कुड़िया रखा रबा बेकार एक होंदा खा चले था जिना बिकाई कार जल था जिया पुरिया लोहाया कार आया कार।

पौड़े बिन सतगुरु कि ना पायो, बिन सतगुरु कि ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिल गए सदा मुक्त है जिन विच हो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता।

पौड़ी सेब की संतोखी जिन सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सो के धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

0: सो करता चिंता करे जिनु पाया जग तिस जोहारी स्वर तिस तिस दीबान पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग।
1: महला पहला लख ने खेन चंगी लख पुना प्रवाण लख तप उपर तीर्था सहज जोग बेबाण लख सुरतन संग्राम रण में है छुट्टे है प्राण लख सुरती लख ज्ञान तिहा।

0: महला पहला पर गड्डी लदिए पर परिये साथ पर बेड़ी पाइए पर गड़िए खात पढ़िए है जेते वर्ष वर्ष पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेखे की गल और हो में चखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया तेता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या

0: काल पूर्वर्त्या कल काल बेताल बियो बीज पतले के अब क्यों कुबेदार जेक होय तो कुबेर तिहुरत होए नान पाहे बारा को रंग ना सोए फैबज खुमचड़ा ये सरुपतन होए नान पक्ति जे रपे पूरे सोए दा कोए
1: महला पहला लब पाप धोए राजा मेहता कूड़ हुआ शिकदार कामने इज्जत पुछी है बह बह करे विचार अंधी रजित ज्ञान होनी पाहे प्रेमरदार ज्ञानी ने चेवा देवा विरूप करे सिंगार उच्चे कुके वदगा वजोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजय करे प्यार तर्मी तर्म करेगा वा वह मंगे मुख द्वार जति सदा वह जुगत न जाने हैं षड बह है करबार सबको पूरा आपे होवे कठिन कोई आखे पत प्रवण पिछे पाइए ता नानक तोलिया जापे
0: महला का सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारिया करता करे सोए अगे जात ना जोर है।

0: कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बदा मन रहे
1: और बिन ज्ञान ना होए पड़ी पड़े हो रखन का साधन मारिए

0: तुम्हा पुरा तपे का सत गिर तुम्हा हो काजुगरा थगन का कूड़ा गैर तुम्हा हो।
1: पहला शाम कहे सितंबर समय सच में अशय सच रहे।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पुठानी अमलकिया
1: चार वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाओ भगत करनी।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया। सबको आख पाए हुए प्राणा सतिये फिर पाइया होर नानक तग न टुटे जे तग होवे जो।
1: महला पहला नाय मनिए पत उपजे साला ही ससूत दर के अंतर पाइये तग न टूट सपूत। महला पहला तग न इंद्री तग न नारी फलके थुक पड़े निदारी तग न प्यारी तग न हथी तग न जेवा तग न अखी बे तग गया पे बते।

पौड़िया पे करना क्यों कला पे हित धारिये देखे किता अपना तर्क चिपकी सारिये जो आया सो चलसी।

थोड़ी चक्कर लगे चक्रे जो चले खसमे पाए हुरमत तिसनो अगलियो वजो पी दूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैर अंदर पाए वजह गवाय अगला मुहे मुहे पाना खाए जिसदा दिता खावना तिस गया शाबाश नानक हुकम ना चले नाल खसम चलाया।

आपे भांडे साजन आपे पूरे इक नी दुद्ध समाई एक चुल्ले बयान चढ़े इक ने हाली कैसवारी गुरपुर खड़े तिना सुवारे ना।

एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगता तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पहाट कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई सुकाह टल गुर सेवी अहनस सहज सुभाई दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाय सतनाम।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है live from गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड सच्चे तेरे लोग सच्चे आकार सच्चे तेरे करण सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदा कलक करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नार सच तिहाई न सच जो मर जमे सो कच कच माला।

हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखै बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दा रस प्रीत लगाई

0: हरे आपे झगर चुकावै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु खालसा साध संगत जी आप जी वडभागे हो, जो अमृत वेले तो लह के सतगुरां जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर हाजरियां भर के सतगुरु महाराज के दर्शन दीदार अमृत रूप गुरबाणी उपरंत गुरमंत्र दे जाप उपरंत भाई साहिब गुरमेल सिंह जी संगरूर वाले उन्होंने सत्कार योग रागी जथे दे पासों रस पिने आसा जी दे वार दे कीर्तन सुन के महान लाह प्राप्त किया है। हुण सत्कार योग जसपाल वीर सिंह जी आए हुए मुखबाग की कथा विचार दे द्वारा आप संगत नूं निहाल करनगे। साध संगत जीओ 1 जून तो लैके 6 जून तक जून 1984 दे समूह
1: 1550 KRPI रेडियो ते तुसी सुन रहे सी लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।
2: यू आर लिसनिंग टू KRPI 1550 रेडियो फर्नडेल वाशिंगटन।
3: ओए जो दिस है अंबर तारे किन ओए चीते चीतन हारे।

0: गुड डेल सिंह बात और डेरी लेके आए ने बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नियर साउथ सरी व्हाइट चौक क्लोज टू द बॉर्डर विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ होम एंड बिजनेस. इन्वेस्ट करो 8 acres at the 100,000 square feet the greenhouse nursery business with and be your own boss. The hatti ati tuhadi family li sunehra mauka jive vich nursery de naal naal 5-bedroom house totally remodeled with in-ground outdoor pool, retail shop, warehouse, private suite ati hor vi bahut kuch. Aaj hi sampark karo Gurdayal Singh Bath nu at 604-351-5111.
1: ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੀ?
2: ਹਾਂਜੀ,
1: ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਪਕਾਈਏ?
2: ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢ ਵਾਲੇ ਫੁੱਟੀ ਕੇ ਨਾ

तो पति दे दुख देच पत्नी भी शामिल हुई। और यह हकीकत है जब कोई महान दार्शनिक महान कवि किसे उलझन देच फसदा है और उस तो किसे समस्या का समाधान नहीं होता या उसके दिमाग देचो गीत दिया लहरा नहीं निकल दिया तो जेड़िया उस वक्त पीड़ा ते तकलीफ दर्द उसके हिरदे विच पैदा होता है ये वह कभी ही जानता है ये वो ही दार्शनिक ही जानता है। तो काफी दुखी ते चिंतातर मन नाल रात नू सौं गए। अज जैसे सवेरे उठे ते आपने रोजमर्रा दे कर्म दे मुताबक ग्रंथ चुकया पर पत्नी ने आख्या नहीं तुसी पहले जाओ नदी तट ते इशनान करो रोजमर्रा दे ब्राह्मण दे जड़े कर्म ने उन्हों निभाओ प्रभु भक्ति करो नितनेम करो फिर इस ग्रंथ नू लिखण दी कोशिश करो ओ गैबी शक्ति रखण वाले परिपूर्ण परमात्मा आप बख्शिश करनगे आप रहमत करनगे। कहिंदे ने पत्नी दी ये गल मन चिंतातुर मन दे नाल श्री जयदेव नदी तट दी तरफ जा रहे ने सोचदे होया कि कोई लैन कोई पंक्ति दिमाग दे चों उभरे पर कुछ उभर भी दिखाई नहीं देंदी। अज हिरदा ऐसा अमावस दी रात बने आया है जिदे च कोई चमकदा होया मामूली जिया तारा भी नहीं स्यारा भी नहीं। कहिंदे ने इधर जयदेव रुखसत होए नदी तट दी तरफ भाई साहब भाई गुरदास जी कहिंदे ने गुण निधान घर आए के भगत रूप लिख लेख बनावे जयदेव दा ही कोई रूप धारण करके जयदेव दे घर आया ते गीत गोविंद दियां दो पंक्तियां लिख दित्तियां सुनहरी स्याही दे च लिखियां जबकि सारा ग्रंथ काली स्याही दे च लिखिया है। लिखदे आया जद पद्मावती ने वेख लिया तां ओ भज्जी होई आई ते कहन लगी रस्ते च ही वापस आ गए इशनान नहीं कीता नितनेम नहीं कीता बंदगी नहीं कीती तां जयदेव जो वास्तविक गुण निधान प्रभु आप सन कहन लगे पंक्ति फुर गई सी लिखण लई वापस आ गया ग्रंथ संपूर्ण हो गया ग्रंथ मुकम्मल हो गया। गीत गोविंद संपूर्ण करके अलोप हो गई ए अगम्मी शक्ति पद्मावती भोजन बनाने दे चलेन। इतनी देर दे श्री जयदेव जी महाराज नदी तट तो इशनान करके वापस आए गोविंद गोविंद दी धुन गीत अलाप दें घर विच प्रवेश होंदे आ की देखदे ने पत्नी भोजन छक रही है ते जयदेव कहंदे ने मैं ब्राह्मण होके कुछ दिन नित दे कर्म भुल गया सी पर तू भी भुल गई मैनू खिला के ही तू खांदी होंदी सी अज की हो गई बहुत भुख लगी। कहन लगे नहीं तुसी ग्रंथ संपूर्ण कीता ना थानू बहुत खुशी हुई सी ते उस खुशी खुशी च मैं थानू भोजन छकाया है पर हुण खुशी इतनी प्रबल है कि थानू छकिया होया भोजन भी याद नहीं रहा। जयदेव सुन के दंग रह गया है मैं भोजन छकिया और गीत गोविंद संपूर्ण हो गया है हां संपूर्ण हो गया है तुसी खुद ते कहे और वो दो लाइना तुसी सुनहरी स्याही दे नाल लिखिया ने मैं खुद वेखिया ने। भजे हुए जयदेव गए ग्रंथ नू खोलदे ने वाकई ग्रंथ संपूर्ण दो पंक्तियां सुनहरी स्याही नाल लिखिया हुई ने अखर पर प्रतीत कर होए विस्माद ना अंग समावे जैसे उस पंक्ति नू पढ़दे ने विस्माद घर दे चले गए आश्चर्यता ते रहस दे चलीन हो गए एकदम आप ते सुरूर तारी होया अरदास की थी हे त्रिभुवन धनी हे परिपूर्ण

0: आत्मा तू मेरे दिमाग विच ही थोड़ी शक्ति पा देंदा ते मैं आप लिख लेंदा ये खेचलां तुसी क्यों कीतियां। तां कहिंदे ने अलहाम होया आकाशवाणी होई अंतर आत्मा बोली जय देव जान बुझ के असी तेरे दिमाग विच ये कमी पाई खुद लिखियां ताकि तेनू किधरे अहंकार ना हो जाए कि इतने वड्डे ग्रंथ दी रचना मैं कीती है इसका करता मैं। ते जद भी किसी भगत नू इस प्रकार का अहंकार हो जाता है ते अपने आप नू करता मन लैंदा है मेरे नालों उसका संबंध टूट जाता है। ते तू मैनू इतना प्यारा लगे है मैं नहीं चाहता सी कि तेरे ते मेरे विच कोई वित होवे। बार बार धन्यवाद दे नाल भरे जय देव अश्कबार हो बार बार सजदे विच होए हे प्रभु लख लख तेरा शुक्र अज पता चलिया जो मैं बोलदा वो तेरी शक्ति जो मैं वेखदा वो तेरी शक्ति है जो मैं चलदा ये भी तेरी शक्ति है जो मैं करदा ये भी तेरी ताकत है और जो मैं सोचदा हे प्रभु ये भी तेरी शक्ति है। वास्तविक मेरे रोम रोम विच तू ही काम कर रहे हैं तू ही वसे हैं तू ही रमे हैं। श्री जयदेव जी महाराज का यह गीत गोविंद नामक ग्रंथ भगतां दी दुनिया च बहुत ही प्रसिद्ध है और इनू पढ़ पढ़ के भगत जन आनंद लेंदे ने। गीत गोविंद दे कुछ हिस्से बकायदा प्रकाशित हो चुके ने और इन्हां गीतां विच भक्ति भाव ज्ञान वैराग सब कुछ दैवी गुण समो दिते ने भगत श्री जयदेव जी महाराज ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच आपदा एक संस्कृत विच बड़ा ही सुना पदा उचारण किया होया है जो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच गुजरी राग दे अंदर दर्ज है। इस पदे दियां अस्थाई पंक्तियां ये ने केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयंग हे मन केवल राम नाम दा रमण कर ते उस दे ही अमृत स्वरूप दा पान कर। राम कौन राम कैसा है किस राम दा अमृत पान करिए किस राम दा चिंतन करिए किस राम दे सुरत लीन करिए तो उस राम दी आप तशरीह कर देने उस राम दी आप व्याख्या कर देने। इस पदे विच परमाद पुरख मनोपिमंग सत्याद भाव रतन परमद्भुतन परकृत परन जद चिंत सर्वगतन। परमाद जो परम आद है अनादि है जिसदा मूल नहीं लभ्या जा सकदा और जो सब दा मूल है जिदी बुनियाद दा कोई पता नहीं जो सब दी बुनियाद है जो सब दी जड़ है जो सब दा आधार है ऐसा जिड़ा ब्रह्म है वो अनादि है परमाद पुरुख वो फिर पूरे होया है। पुरुख तो मुराद पुरी पुरी बसंता सा पुरखा जो पुरिया पुरिया विच रमे आया है व्यापक है वो पुरुख है। परमाद पुरुख मनोपिमंग मनोपमा तो रहत है दरअसल मन अपने अनुभव विच पूर्ण तौर ते परमात्मा नू नहीं लिया सकदा मन पूर्ण तौर ते जिसनू सोच नहीं सकदा मन जिसकी पूर्ण तौर ते कल्पना नहीं कर सकदा ते जिसकी मन ही कल्पना नहीं कर सकदा उनू जबान नाल कथन करना ते बहुत औखा उनू अखां नाल ते वेखना बहुत औखा क्यों कि अखां जिथों तक वेखदियां ने उस तो भी अगे की कल्पना मन कर सकता है। जबान जिथे तक कथन करती है उत्थों तो भी अगे की कल्पना मन कर सकता है कन जिथे तक सुन सकते ने उस तो भी ज्यादा कल्पना मन कर सकता है। कल्पना की प्रवास बड़ी बुलंद है कल्पना बहुत दूर तक चली जाती है पर श्री जयदेव जी महाराज कहते ने चाहे कल्पना की प्रवास कितनी उच्ची क्यों ना हो कितनी दूर की क्यों ना हो कितनी गहरी क्यों ना हो फिर भी परमात्मा मेरी कल्पना विच नहीं आउंदा वो किसी दी कल्पना विच नहीं आउंदा। मन दी सोच तो परे मन दे विचार तो परे इस वास्ते आप कहने मनोपिमंग मनो उपमा तो रहत है। परमाद पुरुख मनोपिमंग सत आदि भाव रतन ओ सत चित आनंद आदिक भावा दे नाल रथ आया है। ओ सत है, ओ चित प्रकाशमयी है और ओ आनंद स्वरूप है। एक पंक्ति देख राम दी व्याख्या इंज कर देने, प्रमाद पुरुख मनोपिमंग सत आदि भाव रतन परम अद्भुतन परम अद्भुत रूप है, परम आश्चर्य रूप है। मनुख उत्थे आश्चर्य हो जाता हैरान हो जाता है, विस्माद हो जाता है। जिन्हू वेखे ते पूरा वेख ना सके, जिन्हू सोचे ते पूरा सोच ना सके और जिसनू चखे ते पूरा स्वाद ना मान सके। फिर भी वह बच रहे जिन्हू सुने ते फिर भी पूरा ना सुन सके। उत्थे विस्माद दा तारी होना कुदरती गल है। उत्थे आश्चर्यता ते रहस्य दा पैदा होना कुदरती गल है। कहिंदे ने एक बच्चा रहस्य विच जीवदा है, एक कवि रहस्य विच जीवदा है, एक संत रहस्य विच जीवदा है। अजोका समा चूंकि इस ढंग दा बतीत हो रहा है कि हर मनुख ऐसा कहिंदा मैं सब कुछ जानदा, चाहे कुछ भी नहीं जानदा, मैं ते सब कुछ वेख लिया, मैं ते सारा सुन लिया, मैं उसनू पूर्ण तौर ते सोच लिया। अगर ऐसा कोई दावा करे तो आश्चर्यता नहीं पैदा होती, रहस्य नहीं पैदा होता, विस्माद नहीं पैदा होता। इस तरह का दावा करने वाले अजोके समय च बहुत ज्यादा ने, क्योंकि अज के समय च जितने कॉलेज ने जितने विद्यालय ने ये पहले नहीं सी। अजोकी विद्या ने भावे कुछ दिता है या नहीं, लेकिन रहस्य नु खत्म जरूर किया है, विस्माद नु खत्म जरूर किया है। मनुख दी दुनिया विच जो एक विस्माद सी, रहस्य सी, वो खत्म हो गई, वो अज देखण नु नहीं मिलता। हां बच्चे कोल ए विस्माद है, अजे अबोध है, उसका विस्माद अबोध अवस्था ते खड़ा है, अचेत अवस्था ते खड़ा है। फिर कवि कोल विस्माद है, या इन कह लो कविता दा जन्म ही विस्माद तो होंदा है, कविता दा जन्म ही रहस्य तो होंदा है। तो कवि रहस्यवादी होंदे ने, संत रहस्यवादी होंदे ने, वो जो कुछ भी वेखदे ने वो ऐसा महसूस करदे ने कि एक रेत दे जर्रे नू भी पूर्ण तौर ते वेखना बड़ा औखा है, क्योंकि वह भी अपने विच बहुत कुछ छुपाई बैठा है, बहुत कुछ छुपाई बैठा है। सूरज नू ते पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है, पर एक जर्रे नू भी पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है। एक दरखत नू ते पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है, पर एक पत्ते नू भी पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है। उहदे विच भी बहुत कुछ छुपिया होया है, बहुत कुछ गुप्त है, बहुत कुछ सूक्ष्म है। तो जैसे ये बोध होंदा है कि बहुत कुछ सूक्ष्म छुपया होया है जो मैं नहीं देख सकता, बहुत कुछ अदृश्य है, तो रहस्य पैदा हो जाता है। फिर विस्माद मंडल तारी हो जाता है, तो कवि विस्माद विच जीवदे ने, संत विस्माद विच जीवदे ने। भगत जयदेव जी महाराज कहते ने परम अद्भुतन, ओ परिपूर्ण परमात्मा परम आश्चर्य रूप है। परकृत परम, ओ प्रकृति तो परे है। कहिंदे ने रविंद्र नाथ टैगोर सागर तो इशनान करके वापस आ रहे ने, रस्ते विच एक गंदगी दा ढेर पिया है, सवेर दा वक्त है, सूरज दिया किरणा उस गंदगी दे ढेर नू छू रही ने। ये सारा दृश्य वेख के रविंद्र नाथ टैगोर नच उठे, कहन लगे हे प्रभु तेरी आश्चर्यता जो मेरे ते अज प्रगट हुई है वो ये कि मैं तेरी निर्लेपता दा ज्ञान हासिल कर ले। सूरज दिया किरणा गंदगी नू छू रही ने, फिर भी किरणा गंदियां नहीं हो रही, फिर भी सूरज गंदा नहीं हो रहा। तू मेरे गंदे शरीर दे रोम रोम विच बैठा है, फिर भी तू गंदा नहीं है, तू निर्लेप है, प्रकृति तो परे है, सब कुछ ते विच है, सब कुछ ते दूर है, सबके मत सबों ते बाहर, सारियां देश तू है पर फिर भी सारियां तो बाहर है, निर्लेप है। तो श्री जयदेव जी महाराज कहने परमद भूतन परकृत परन ਜਦ ਚਿੰਤ ਸਰਬਗਤਨ, ਜਿਸਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗਤੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਦ ਪੁਰਖ ਮਨੋਪਿਮੰਗ ਸਤਿਆ ਦੇ ਭਾਵ ਰਤਨ ਪਰ ਮਦਭੁਤਨ ਪਰ ਕ੍ਰਿਤ ਪਰਨ ਜਗ ਚਿੰਤ ਸਰਬਗਤਨ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨੋਰਮੰਗ ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਤਮਯਨ। ਐਸਾ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਰਾਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਨ ਕਰ, ਉਸਦੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਮਾਣ। ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਦਨੋਦ ਜਸ ਸਿਮਰਣੇ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾਉਦ ਮਰਨ ਭਯੰ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬਲ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬ੍ਰਿਧ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਵਿਕਲ ਬਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ, ਭਜਲੇ ਰੇ ਮਨ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਬੁੱਢੇ ਕੋਲ ਤਨ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਿਧ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਿਧ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੋਗਮਈ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ। ਤੋ ਸ੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਨਮ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਸਾਹਿਬਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਜਰਾ ਮਰਾ ਹਰ ਜਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਟਾਨੀ। ਹਰੀ ਦਾ ਜੋ ਜਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰਕ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਲੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਭਗਤ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਈ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਬ੍ਰਿਧ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਉਲਾਸ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਸਦਾ ਹੁਲਾਸ, ਉਸਦੀ ਉਮੰਗ, ਉਸਦੀ ਤੁਰੰਗ ਔਰ ਉਸਦੀ ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਜਰਾ ਮਰਾ ਹਰ ਜਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਟਾਨੀ। ਸ੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪਦੇ ਦੇ ਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਦਨੋਦ ਜਸ ਸਿਮਰੇਨ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾਦ ਮਰਨ ਭਯੰ। ਇੱਛਸ ਜਮਾਦ ਪਰਾਭਯੰ ਜਸਵ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਤਨ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਮਾ ਦਾ ਤਿਸਕਾਰ ਕਰੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਤਾਂ ਜਸ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰ, ਜਸਵ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਤਨ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰ ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਜਸ ਹੈ ਇਹੀ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਮ। ਇਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਉਹ ਹੈ ਜਦ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੈਸੇ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਭ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਕਾਮਨਾ ਮਹਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਚਿੰਤਕ ਚਿੰਤਨ ਜੋ ਹੈ ਮਾੜਾ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਚਲੇਗਾ। ਤੋ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨਾਮ, ਉਸਦਾ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਚਿੰਤਨ ओतों कर इच्छस जमाद प्राभयं जस्वस सुकृत कृतं भवभूत भाव समभ्यं प्रसन्न परमन प्रसन्न मेदन। श्री जयदेव जी महाराज कह देने जो त्रैकाल दर्शी है और एक सार परिपूर्ण जो रमया है व्यापक है भवभूत भाव समभ्यं जो हुण भी है पहले भी सी अगावी जो है होवेगा जो हर समय मौजूद है त्रैकाल दर्शी है भवभूत भाव समभ्यं परमन प्रसन्न मिलन जो अत्यंत प्रसन्न चित्त है जो अत्यंत परम आनंद विचलीन है तू उसका ही कल्याणकारी जस उच्चारण कर। यही शुभ कर्म है यही शुभ चिंतन है। अगां चल के श्री जयदेव जी महाराज फरमान कर देने हर भगत निज नहे केवला रिद कर्मणा बचसा हरीदा भगत मन बाणी शरीर करके प्रभु नाल जुड़े हुए है। ऐसा जो हरीदा भगत है हर भगत निज नहे केवला रिद कर्मणा बचसा जोगेन किंग जगेन किंग दानेन किंग तपसा। ऐसा जो भगत है जो मन करके शरीर करके बाणी करके प्रभु विचलीन है ओदे सामने जग तुच्छ है जोग साधना भी तुच्छ है और ऐसे भगत दे सामने दान भी कोई मायने नहीं रखता। भाव दानी तो भी ओ भगत उच्चा है जोगी तो भी ऐसा भगत उच्चा है और जग करने वाले तो भी ऐसा भगत उच्चा है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी मन दिए कि इना सारे कर्म कांडा तो भगत दी जिंदगी उच्ची है जोग जग नै फल तुम मानो जो प्रभ जस बिरसरावे। जिथे भगत पहुंचे है उथे जोग जग दी पहुंच नहीं है दान दी पहुंच नहीं है। इस सब कुछ तो उच्चा जीवदा है भगत हर भगत निज नहे केवला रिद कर्मणा बचसा जोगेन किंग जगेन किंग दानेन किंग तपसा। इस पदे दे अखीर विच आप कहंदे ने गोविंद गोविंदेत जप नर सकल सिद्ध पदन जयदेव आयो तस्सु फटं भवभूत सर्वगतं। गोविंद गोविंदा ऐ मनुख जाप कर और इस तरह जाप कर दिया ही तेनु सारी गतियां दी प्राप्ति होवेगी तेनु सब कुछ दी प्राप्ति होवेगी। गोविंद दे चिंतन दे च ही संसार दे सुख ने परमार्थ दे सुख ने गोविंद दे सिमरन दे च ही लोक सवर जांदा है परलोक सुहेला हो जांदा है।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale Washington।
2: सुनदे हो जी।
3: हां जी
2: दसो जी की पकाइए।
3: अपने गवांड वाले फुटी के न जाइए आलू जी दे बधिया बैंगन अनमोल ने गोभी उत्थे ताजी करेले दे माहौल ने।

0: तेजे सब्जी भले खाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जां कॉल किरण @604581190।

ओंकार सतनाम करता पुरख निरभो निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे चार युगां दा जिक्र बार बार आया, सौ युगां का हुण निबड़ा नर मनुखां नूं एक निधाना। वर्ष के चारे युग एक ऐसी श्रृंखला है जो समय के खड़ी है, मनुख दे मानसिक मंडल ते विचारां ते खड़ी है। समय विच युगां दी तब्दीली ए एक मनोत पुरानी है, इन्हों मिथ भी कह सकते हैं। अस्थान दे युगां दी मनोत जैसे किसी थां ते कथा कीर्तन हो रहा है, वो जगह सचयुग है, वो जगह बैकुंठ है। कहो कभी कहिए काए साध संगत बैकुंठे आए। जिथे सत्संग हो रहा है बैकुंठ है, जिथे सत्संग हो रहा है सचखंड है, जिथे सत्संग हो रहा है सतयुग है। एक अस्थान देश पर तीसरी घटना जो है मानसिक मंडल देश ये विज्ञानक है, सच्चाई है, एक तथ्य है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग मनुख दिया मानसिक अवस्थावान है। एक समय विच घर दे दस जियां विचों कोई सतयुग विच जी रहा होवेगा, कोई त्रेते विच जी रहा होवेगा, कोई द्वापर विच जी रहा होवेगा और कोई कलयुग विच जी रहा होवेगा। मनुख नूं वेख के असीं कह सकदे हां इह सतयुगी जीव है और मनुख दी तरजे जिंदगी व्यवहार आचार नूं वेख के असीं कह सकते हैं इसे मेरा ही कलयुगी जीव है। ये ठीक है सनातन मत दे भी और गुरमत दे अंदर भी युगां दा शरीर रूप भी मन लिया गया है। जैसे कहानियां आउंदियां ने कबीर नू कलयुग मिलिया, गुरु नानक नू कलयुग मिले, मरदाने नू कलयुग मिलिया, प्राणी थां ते कलयुग प्रगट होया। कलयुग नू एक व्यक्ति मन लेना ये मिथ है, पर पुराना एक ढंग से बयान करन दा जैसे बुराइयां नू ही शैतान आखिया जांदा है, पर इस्लाम दे शैतान दा एक वजूद मन लिया गया, उसका एक आकार मन लिया गया। शैतान नू एक व्यक्ति मन लिया गया। दरअसल शैतानियत शैतान इसे बुराइयां इसे जो अवगुण है। इसी तरीके दे नाल देव बिरतियां पवित्र बिरतियां प्रकाशमई बिरतियां जिस दे अंदर चल दिया ने वही देवता, और जो अवगुण हारा है अचेत ते अंधकार विच जी रहा है वही राक्षस है। वास्तविक एक सच्चाई है, देवता होना राक्षस होना शैतान होना भगवान होना ये मनुख दे मन ते आधारित है। एक कोई समय कोई शैतान हो सकता है, कोई भगवान दा रूप हो सकता है, और दूसरा

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: Family Care Pharmacy.
2: पूरे BC विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gerdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gerdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GerdaleBaudGroup.com.

कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। मैं अछूते विषय न आज विचार दे रहा हूं, क्यों लगा हूं? वो है चार युग। वैसे से भारत की मनीषा करीबन करीबन मनुखता में हर समय चार हिस्सों में वंडती रही है। उन्हें जीवन के ढंग भी चार बचे, जैसे क्षत्रिय

वेद कहलांदे ने, श्याम वेद युग रजत अथर्वण, ब्रह्मे मुख माया है त्रैगुण, ऋग्वेद है, शाम वेद है, यजुर्वेद है, अथर्वण वेद। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने भी इस विषय में अपने विचारों विच प्रश्न और चार युगों की बड़ी सोहनी व्याख्या जगत के सामने रखी। चार युग इन्हों कई दृष्टिकोण के नाल नापना तोलना पड़ेगा। प्रथम समय दे चार युग, दूसरा स्थान दे चार युग, तीसरा मन दे मानसिक अवस्था दिया चार श्रेणियां जिन्हों चार युग कह सकते हैं। प्रथम समय दे ऐसा मनिया गया है कि लख डेढ़ लख साल बाद युग बदल जाते हैं और पौराणिक ग्रंथों में युगों की बकायदा उम्र भी दसी गई है। इतने युगों बाद, इतने समय बाद युग बदल जाता है। युग की तब्दीली समय पर खड़ी है और हर युग का अवतार भी मनाया गया। दूसरा युग स्थान, तीसरा युग मानसिक अवस्था और ये तिने पहले मैं थोड़े सामने उजागर करने लगा। प्रथम समय दे चार युग इतिहास में वाची है। आज तो 5000 साल पहले श्री राम है गए और आज तो कोई 3500 साल पहले श्री कृष्ण है गए। अंदाजन 525 साल पहले धन गुरु नानक देव जी महाराज है गए। पर ये तिने अवतार से 5000 साल की अवधि में ही हो जाते हैं। इस युग की लखा साल की उम्र कपोल कल्पना के बिना और कुछ नहीं। क्यों? श्री राम नो त्रेते युग का अवतार मनते हैं, 1500 साल बाद कृष्ण मौजूद हैं। श्री कृष्ण नो द्वापर युग का अवतार मनते हैं और 3000 साल बाद गुरु नानक प्रगट हो गए और धन गुरु नानक देव जी कल युग का अवतार मने जाते हैं। ये तो सारे ही दे सारे 5000 साल दे हो गए। ऐसा अंदाजा है इस युग की उम्र समय दिखनाफी है तो 2500 साल के बाद हो नहीं सकती। कुल अवधि 2500 साल। युग की तब्दीली किस तरह आती है, किवें मन लिया जाए युग बदल गया। हजारां लखां साल पहले जो सूरज सी अज भी आई है, लखां साल पहले जो चंद्रमा सी अज भी आई है और इसी तरीके नाल धरती भी हुई है, तारे भी हुई ने, सियारे भी हुई ने, सागर भी वही है और किस

करो। शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। गुरु रूप सत्संग जीओ सनेवर फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धार्मिक विद्वान ऐसा मन रहे ने दुनिया भर दे ज्ञान नो सिर्फ दो हिस्सों ची तकसीम किया जा सकता है, ज्यादा हिस्सों च नहीं। एक पदार्थ का ज्ञान, एक परमात्मा का ज्ञान, एक संसार का ज्ञान, एक निरंकार का ज्ञान, एक बार का ज्ञान, एक अंदर का ज्ञान। ज्ञान दियां सारियां धारावां इन्हां ही दो सागरां विच लीन हो जांदियां। ज्ञान कुछ भी होवे, या बाहर दा है या अंदर दा है, या पदार्थ दा है या परमात्मा दा है। ये जो दो प्रकार दा ज्ञान है, इस दा फल, इस दे हासिल करन दा मकसद जो धार्मिक विद्वान दसदे ने, वो ए पदार्थ दा ज्ञान हासिल करके पदार्थ नू अपने अनुकूल करना, अपने अनुकूल करना। समझ आईए मनुख नू, अगर पदार्थ मेरे अनुकूल नहीं है, मैं इस तो सुख नहीं ले सकता, इस तो सुख नहीं ले सकता। हवा बहुत गर्म है, जिन्हू कहने लू चल रही है, दर्जा हरारत 50-52 तो भी अगे चला गया, तो इनू संस्कृत विच कहिंदे ने वाता अनुकूल, हवा नू अपने अनुकूल करना। जिस तरह की हवा मैनू चाहिए, मैं इसनू अपने अनुकूल करना। पानी दा स्वभाव ते है निवाण दी तरफ चलना, पर मैं रहिंदा 8वीं मंजिल ते 10वीं मंजिल ते, मैनू उपर चाहिदा पानी। तो हुण मैं पानी दी धारा नू अपने अनुकूल करना है, भावे वगदी है निवाण दी तरफ, मैनू वगाना है चढ़ाई दी तरफ। बार दा ज्ञान, पदार्थ दा ज्ञान, पदार्थ नू अपने अनुकूल करना। जो मेरे अनुकूल नहीं है, वो मैनू सुख नहीं दे सकता, उस तो मैं सुख नहीं ले सकता। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, एक किसान धरती नू अपने मन मर्जी दे अनुकूल करना चाहता है और करता है, जैसा बीज मैं बोना चाहना वो पैदा हो, जैसे फूल फल मैं उगाना चाहना वैसी हो गए। इसी तरीके नाल अगन है, अग इसने मनुख ने बहु प्रकार विच अपने अनुकूल कीती हुई है, अपने अनुकूल कीती हुई है, और अगन तो बहुत सारी अपनिया लोड़ां दी पूर्ति ये कर रहे हैं। और अग बहु प्रकार रूप देच मनुख दी सेवा देच जुटी हुई है, किधरे भोजन बना रही है, किधरे रेलां मोटरां गड्डियां चला रही है, किधरे बड़े बड़े

तो फिर मनुख दी फितरत ने ये काम भी शर्म अंजाम देता कि मैं बंदियां नू भी अपने अनुकूल करना, मैं मनुखां नू भी अपने अनुकूल करना है। बड़े बड़े जालम राजे महाराजे डिक्टेटर इत्थों ही पैदा होए, मनुख अपनी चाल ना चले साड़ी चाल चले, मनुख अपनी मर्जी दे मुताबिक ना जीवे मेरे हुक्म दे मुताबिक जीवे, मनुख अपनी मन मर्जी मुताबिक कुछ ना करे जो मेरी मर्जी है वो करे। जितनी मनुख दी शक्ति वधी ताकत वधी, जद उसने देखिया मैं पदार्थां नूं अपने अनुकूल कर सकदा तो हुण मनुखां नूं क्यों ना अपने अनुकूल करा। मनुखी इतिहास विच ऐसे ऐसे राजे महाराजे शहनशाह होए ने जिन्हां नूं मनुख कहना भी मनुखता दी तोहीन। लाशां दे उपर चंगेज खान दे घोड़े लंघदे सन, हसदा से तड़पदे हुए मनुखां नूं वेख के हलाकू नूं खुशी मिलदी सी, बहुत वड्डी खुशी मिलदी सी। अपने तिन भरावां नूं मार के औरंगजेब सारा दिन नचदा रहा सी, ढोल वजा के नचदा रहा सी, बड़ा खुश बड़ा प्रसन्न। इन्हां भेरावां नूं क्यों मारिया ये मेरे अनुकूल नहीं चल सकते, खत्म करना है। प्यो नूं जेल दी तंग तारीख कोठड़ी च क्यों पाया ये भी मेरे अनुकूल नहीं चल सकता, तड़पा तड़पा के प्यासा मारिया है। अगन नूं अपने अनुकूल करना है, हवा नूं अपने अनुकूल करना है, धरती नूं अपने अनुकूल करना है, पानी नूं अपने अनुकूल करना है। जैसा मैनूं चाहिदा जिथा जिथे मैनूं चाहिदा है इनूं उत्थे आना चाहिदा। ठीक है, वगदा है निवाण दी तरफ वगे पिया, मैं रहना 50 मंजिल ते मैनूं इत्थे चाहिदा। पदार्थ नूं अपने अनुकूल होंदा वेख मनुख दा हंकार वद्दा गया, जितना हंकार वद्दा गया उतना मनुख निरंकार तो दूर होंदा गया, दूर होंदा गया। ए सदी अजोका युग बड़ा प्रबल हंकारी युग, बहुत प्रबल हंकारी युग। सिर्फ बादशाह या राजे महाराजे ही मनुखां नूं अपने अनुकूल चला के खुश नहीं आंदे सन, बल्कि कुछ धार्मिक पखंडी गुरु उन्हां दी भी होई कोशिश साडे अनुकूल चलन, साडी मर्जी दे मुताबिक चलन, साडे चेले बनन। मैं हैरान होना धन गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु अर्जन देव जी महाराज जे संबोधन करते ने, कोई रब की गल करते ने साधु करके कहते, संत करके कहते, भाई करके कहते, और फिर बेनती करते ने, करो बेनती सुन मेरे मीता, संत टहल की वेला। मैं बेनती करना चेले ते हुक्म किया जा सकता है, चेले अगो बेनती करने की की लोड़ है, चेले देते हुक्म किया जा सकता है, नहीं वो तो बेनती करते हैं। फिर चेला नहीं कहते, मित्र कहते, मित्र कहते हैं। जे किसी के अंदर कुछ खामियां देखिया ने, प्रबल हंकार देखे, उन्होंने भी समझाने का ढंग की है, साधो मन का मान त्याग, कहना साधु है। हंकारी नूं साधु कहण दी लोड़ की है? नहीं, कहना साधु। जे दूजे दा हंकार होना, हंकार दा मतलब की है? अहं, मैं बहुत वड्डा अगला छोटा, अगले नूं छोटा।